0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
6: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345923280।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक, न्यू हेयर ग्रोथ, खाने के फवायद, जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद, सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, वालिद के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल, सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345923280।

सो पे रेली के लिए सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह भाई, अल्लाह से हद दर की गुल बीबी हमारे ज्यादा बनना देते हो सब चाड़े।

soy. Deir sifatte krimo dumra result bara ki kana gap lagave ms aap nahi lagaye bhai aap aap bilkul nahi lagaye theek hai aapko result nahi milega theek hai ms hum sifat nahi karte hum sirf deliver karte hain bhai hum aapko sirf ye se kehte hain ki bhai aap is tarah kare aap is tarah kare aap wo kare na जो मैंने पहले आपको समझा क्रीम की जरूरत ही नहीं है भैया आप कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करें आप अच्छी अच्छी खाने फ्रूट्स वगैरह फ्रूट फल इस्तेमाल करें ठीक है ना आप क्रीम यूज ना करें ठीक है।

मामू आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त जबरदस्त है। काम की साथ साथ प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ। बनाने वाले ने तो मोहब्बत का दर्स दिया है, नफरत करना तो हमने खुद सिखा लिया। आई लव मामू, लव यू सैम सैम सैम सैम सैम सैम सैम सैम सैम सैम। मैच्योर लोग भी हमें सुनते हैं भाई। ओ माई गॉड, अकेल अरोश सर नंद इजहार भाई रिक्वेस्ट पूरा के खैर दे अजज दे इज इट ऑल लिस्टर टास। ओके ढेर ज्यादा मनाने को शुक्रिया अदा करो। दुनिया मनाने यो जहान।

आवाज गड़बड़ देखना हवाजी संगीन खाना गुलाब वाद उशु चावल दी उखोड़ल गुलविश चावल घुमी यू पेर न द्री पेरी उखोड़ी यू पेरे चिकला रोटे एक दल गना मंडे हिदमत में हम कोलो खो प्याम लगा जेकल अप उड़ुंबी दग बांधी रोटे एक दल गना प उड़ुंबी स्टार्ट पांधी नो जबस वो गे उमा सर के मैं नाश्ता माश्ता कड़े हुआ पता से वो जी ब्याम हो गए शी डायरेक्ट वाला लमके नास्तम बस आगा तुरु रुदी रहता हुई लगे संग चलने मिलमा वही तो खो वही जाने मो वही तो मिलमनो नमाख के नास्ते मोरते मेल मेल मेल जर ते मिलमन कार मस मड़ा वही के ना मड़ा वही तो पकड़े से मिल मई वही पास हवार शमंड हुई आधीक तो उतरेगा चिकल ब्याह पास हिदमत गुदरी मंडी तरडी मुंह वाली नो ब्याह पद सलोर मको पिंजम पेंड की ब्याह की नस्ता ब्याह मेरा ताकत रे हुई कोई जालिम शर्मोल मको बस का नो जी ब्याह के लागे ना पास ही दम ब्याह प शपगम ने ब्याह पवू में पेंड की ब्याह की नस्ता अस्सलाम वालेकुम हाँ दिया एहसान प्राम पागोड़े ना ढेर ढेर मंद लाद कदर मंद का।

ओके भाई लव इज बिल्कुल जी ना नमस्ते रहो अबू मोहम्मद सुनते फ्रॉम के कालकोटो डेरे मंदने को हां हदा करन खान सवाई

0: हाँ जी सुन सर सर ऐसा कॉल मिल रहा है कॉल आपके मखलूक ग्रुप लाइन मंडी जी अस्सलाम वालेकुम
1: जनाब किस में है
0: खैर खैर जी ता सुखिया छन मुखरा बांधे
1: खैर खैर ता सुख में है
0: असस दुआ गाने सु खबर के वे दे चरता ना
1: रहो ताया ना खबर को ना पान
0: नवाब द ताया ने कॉल कर दे नवाब प्रोग्राम के दहर के ले आयो
1: बस लाले
0: बखानो खैर खैर ते नवाब दखे
1: ते
0: दिनम नवाबी को ये नवाब
1: नुनी खान मोहम्मद नवाब खान जी
0: ओहो तुम रोग
1: मतलब मंजूर का
0: आओ
1: मुसाफिर सलाम कल करेगी
0: बिल्कुल लगता मुसाफिर
1: है
0: लगता सिर्फ शेर दे कमा दे जंगल वाला
1: जंगल खारे की पति जंगल के बोला
0: ना ना ना दा शेर जी कम दिया जंगल वाला देखे ना सलो रख पो दा शेर याद है
1: सलो रख पो खुले
0: अगला कहीं याद है
1: डॉक्टर
0: साहब खुरा सर खैर से दादी मसरूफ देवा जी ने सबाब मौजूद भी क्लिनिक के सही ना जल्दी सड़े ओके भाई अल्लाह हाफिज

0: ना तासरे टाइम पास ही उकड़ा वही जनोली उस इग्नोर खेवी मैसेज दर था न खेई चे मैसेज वर्ता हो कि द्वारा जे बहादरी प्लेयर आ खेई न दासे खल को सर बस सके दावा खुल द जुन्न ले रखे वर गिन बैखे वर लड़ा बैखे पल जुन बैखे रखपल द खुशालो जुन बैखे मड़ाया का खुशाली कोले शिवले तने शो कोले सो शो कते प्रयो खोदे उस बता नशे के उस बता खपल जिंदगी तबाह के छाता जोर वार के आगे छाते पार चाची बनी मलार के प्रयो के अल तब इतने सलूर बची भी और दिल तते नशे के भी ताच्चे के दिर आगे स्थिति मरा सी चल ले जब चाप प्रयो के म सो शो प्रयो खोदे वाले दुनिया सेवेदा जान लखेस्ता रिश्ता होका मोर अप्लार तो हुए खुले रिश्ता होका खुला मजदूरी खवा पल कार खवा पदे बता खखकारी प्रेदवा देखे बदे अल्लाह रजावा अल्लाह पाक दो मुखले से चर दोम ने जुदा की हाँ का जुदा की चिकुम तो कबाज भी टाइम पास भी जालिमान भी तो खुश किस्मत है मर द्वार का तन न फलो का चिता वा पाने बाउकड़ा ब्याम तासरो दो का ओशला ताड़ेर जालिम खलक दे ताड़ेर टाइम पास खलक दे अवई कनेवी का स्पिन रंग के वफा वेनो माल का बदो जख्मों दवा वेनो बस अल्लाह दे रखमु की अल्लाह दे पमंगा उपता सु ठोलो वने रखमु की
1: सारा दिन गाना रसंद्र सुख वे
2: हेलो दादाजी दादा हुन पे जने दाखो अली जफर दे
1: हां होगा भाई हमने गाना वाला बड़ा देख
0: वाह
1: हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान में गाएगा
0: पश्तो में गाएगा पख्तो हो पख्तो रखना तब तो पता चलता पख्तो खुद इंसान पख्ता ही माते अब यह जमुना पख्ता ना वही

सफरगाम वालो हलता लाइब फीज ने ठोले राशे मात दा बिरयानी ग्राना सिर्फ तासो राशे सारा जो पेट्रोल पंप न पूरी गाड़ी ता पाते खेगमा।